0: 44 संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है, यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी या होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करने की जानकारी लेने लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। और जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: सदा सदा जप नानक एक। गुरु पातशाह जी फरमा रहे हैं, तुद बिन दूजा नाही कोए। एक बारी सारे पढ़ियो, तुद बिन दूजा नाही कोए। किस चीज वल इशारा है गुरु पातशाह दा? अकाल पुरख वल, कि तेरे तो बिना इस संसार नू चलाउण वाली होर कोई दूजी ताकत है नहीं। इशारा समझ लियो। सो इन दिस लाइन गुरु इज सेइंग, विदाउट यू देर इज नो अदर पावर, देर इज नो अदर एंटिटी दैट्स एट वर्क हियर। तू करतार करहें सो होए, तू ही करतार हैं, पाव तू ही क्रिएटर हैं। देर इज नो अदर क्रिएटर बिसाइज दैट वन डिवाइन। एंड इन दिस शब्द यू आर टॉकिंग डायरेक्टली विद गॉड। थ्रू गुरबाणी यू कैन टॉक डायरेक्टली टू गॉड। गुरबाणी दे राही सिद्धी रब नाल गल हो रही है। असी जो पाठ पढ़ रहे हैं तो असी रब नाल गल कर रहे हैं, किवें तू करतार। इंज महसूस करना है कि मेरा मालक मेरे सामने बैठा आ, तो असी उहदे नाल गल कर रहे हैं भी तू करतार, भी तू ही है सब कुछ बनाउण वाला, सब कुछ क्रिएट करन वाला। कर नाम हत्थां दा भी है, भी अपने हत्थां नाल सब कुछ तू बनाया, पाव अपनी ताकत नाल। करहें सो होए, जो तू करदा उही हुंदा है। इत्थे होर कोई ताकत नहीं चलदी, होर कोई शक्ति नहीं कम कर सकदी, जो तू चाहेगा उही होएगा। सो द वर्ड तू करतार करें सो होए ऑल्सो टीचेस अस एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। सो इन मॉडर्न साइकोलॉजी इट ऑल्सो सपोर्ट्स this value of acceptance of a higher order in reducing anxiety and depression. Believing that a wise power which is ultimately in control can provide comfort in chaotic times. Research on religious coping shows that those who use positive spiritual coping, like trusting in God's plan, तू करें सो होए, often experiences with lower anxiety and decreased depression. So इतों तक कि अज की जी साइंस या जी साइकोलॉजी या जो मनोविज्ञान आ, वो भी इस गल के नतीजे उत्ते पहुँच गया कि जेडे लोग रब ते विश्वास रखते ने ते ए चीज़ ते भरोसा रखते ने कि जो रब करदा भला ही करदा आ, ओ दूसरे मनुखा नालों उन्हां दा मानसिक संतुलन बहुत उच्चा हुंदा, वधिया हुंदा, डिप्रेशन दे एंगजाइटी दे इन्ने शिकार नहीं हुंदे, क्योंकि ओ उन्हां दी जिहड़ी शक्ति आ जिहदे उत्ते ओ टेक लाई बैठे, ओह परमात्मा दे उत्ते ला के बैठे ने। सो साइकोलॉजिकली मनोविज्ञान दे पक्खों भी इह चीज़ बहुत लाभदायक है। तू करतार करें सो होए, क्योंकि जिहड़ा रब नूं मन्नण वाला जे कुछ उहदी जिंदगी दे विच उतार चढ़ा आ गया, उन्हें शुक्र दे विच कह के गाह ना गिणना, ठीक है मालका कोई नहीं, अज घट बन गए, अज थोड़ा नुकसान हो गया, कोई गल नहीं, इहदे विच भी तेरी कोई रज़ा होएगी। पर जिहड़ा नहीं मनदा वो उस चीज़ नूं फड़ के बह जांदा, डिप्रैशन चले जांदा। तेरा जोर तेरी मन टेक, इत्थे तेरा ही जोर चलदा आ, तेरी ताकत चलती है, तेरी मन टेक, ते मेरे मन दे विच तेरी ही टेक है, तेरा ही आसरा है। सो इन माई माइंड द ओनली सपोर्ट आई हैव इज योर्स, आई डोंट हैव एनी अदर सपोर्ट, आई डोंट केयर फॉर एनी अदर सपोर्ट। व्हाटएवर दैट अदर सपोर्ट मे बी, वेदर यू बिलीव इन सम अदर एंटिटी, सम अदर पावर, but Gurbani says only that one power. If you need to take support of that one power alone. सदा सदा जप नानक एक, ते सदा वास्ते हमेशा ही हमेशा उस एक नू जपना है। अज गल एक दे दुआले घूमनी है, जिहड़े शब्द चल रहे ने गुरु पातशाह साडा फोकस जिहड़ा दिवा रहे ने कि एक तो बिना दूसरे पासे नहीं जाना। हालांकि सारी बाणी विच ही यही सानू सिक्ख्या है, यही उपदेश है। अगे गुरु पातशाह जी कहिंदे सब उपर पार ब्रह्म दा तार, सारियां तो उच्चा पार ब्रह्म है, दातार जो दाता देण वाला है। ही इज द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, ही इज द गिवर एंड ही इज बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन। तेरी टेक तेरा आधार रहाओ, इस करके मैनू तेरी ही टेक आ, तेरा ही आधार आ, तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरी सपोर्ट है। है तू, है तू होवनहार, तू हुण भी है, पहला भी सी, ते होवनहार गांह भी तू ही रहेगा। You always existed in the past, you exist in the present, and you will always exist in the future as well. Agam agad uche apar, tu agam hai ke paav sade gyan indriyan di paunch to pare hai. Agad uche apar, ite malak di महिमा की गई है कि तेरा अंत नहीं कोई पा सकता, तू उच्चे तो उच्चा है, परे तो परे है। जो तुद सेव है तिन भौ दुख ना है, जेड़े तेरी सेवा करते उन्होंने भौ भाव डर ते दुख नहीं लगता। सेवा तो की भाव है, जेड़े तेरी सेवा करते ने, those who serve you do not fear।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 587-917-0807 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3210-4310-104 ਐਵੀਨਿਊ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लेने लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
0: ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ

तेनू चेते करना भी तेरी सेवा आ। सो कहन जो तुद सेवै, जिहड़ी तेरे जिहड़े तेरी सेवा करदे आ उहनां नूं दुख ते डर नेड़े नहीं आउंदा। सेवा की है इह समझ रहे आपां। एक ते शब्द दी विचार करनी, दूजी रब नूं याद करना, इह वी सेवा च ही आउंदा आ। तीसरा बाणी च गुरु पातशाह कहिंदे नानक ऐसे सतगुर की क्या ओ सेवक सेवा करे। जिहड़ा एड्डा वड्डा सतगुर है, मालक है, उहदी असीं की सेवा कर सकदे हां। एक हांजी उहनूं याद करें, पर अगे गुरु साहिब कहिंदे कहिंदे गुर आगे जीओ धरे। सेवा की करनी, गुरु दे अगे अपना जिंद, अपनी जिंद गुरु दे अगे रख दे। मीनिंग सरेंडर। So the third meaning of seva according to Gurbani is you surrendering yourself to the Guru, to the word of God, making an effort and trying to do what the Guru wants you to do. That's also the definition of seva according to Gurbani. Number one is to learn the meaning of Gurbani is seva. Number two, to remember why Guru is seva. And number three is to accept what the Guru is telling you to do and try to follow it. That is also seva. Chauthi seva ki hai, Gurbani nu pyar karna. Eh vi seva vich aunda hai. To love the word of the Guru is also considered seva. Sahib sevane apna pure shabd vichar, har ki seva chakari sachya shabd pyar. सच्चे शब्द नाल भाव गुरबाणी नाल प्यार करना, ये भी सेवा विच ही आउंदा है। ते एक सेवा जो आपां संसार दे विच करदे हां, लोक भलाई दे काम, कोई चंगे कर्म करने, ये भी सेवा विच आउंदा। वो सेवा विच किस कंसैप्ट विच आउंदा, अगे इस शब्द विच गुरु पातशाह ने फरमाउणा जो दिसै सो तेरा रूप। जो कुछ भी नज़र आ रहा है वह सारा तेरा ही रूप आ। Whatever I see, all the humans, all the animals, everywhere I look at, I see you. Oh, tera hi roop aa. So when I serve the creation, I am also serving the creator, which is sitting within the creation. So jadon assi lokan di seva karde haan, ik dusre di seva karde haan, oh vi seva hi aa, kyunki ohde vich vi tu hi baitha aa. So इहनू होर समझना होवे, जिवें आपां गुरुद्वारे विच लंगर वरताउने आ, प्रशादा वाहिगुरू, पाणी वाहिगुरू, उत्थे इह नहीं वेखणा कि कोई क्रिश्चियन बैठा, कोई मुसलमान बैठा, कोई हिंदू बैठा, उत्थे इह वेखणा कि उहदे अंदर मेरा मालक बैठा। उहनू इह कहणा प्रशादा वाहिगुरू, धर्मां दे लेबल तों उपर उठ के उन्हों प्यार नाल प्रशादा छका रहे हैं, उहदे अंदर मालक की जोत देख के, तो तुसी रब की सेवा कर रहे हो। होर कम्यूनिटी की सेवा करनी, अपने बच्चों नू सब कुछ चंगी मत दिंदा सिखाउंदा आ, टाइम कढ के कम्यूनिटी के बच्चों नू कोई चंगी गल सिखाउणी, ये भी सेवा आ। सो इस तरह बड़िया सेवा दियां वख वख डेफिनेशनस बाणी ने दित्तियां। इन्हां सारिआं दे उत्ते ही सिख ने ध्यान देना, जो तुद सेवै, जेड़े तेरी सेवा करदे ने, तिन भौ दुख नाहै। गुर प्रसाद नानक गुण गाहै। ते गुरु दी कृपा दे नाल हे नानक, वो गुण गा के पाव आनंदमय जीवन जिउंदे ने। दोज हू प्रैक्टिस दिस सेवा, ऑल द डिफरेंट सेवाज दैट गुरबाणी हैज टोल्ड अस, they don't just live their life, they enjoy their life, they sing their life with the blessing of the Guru. Jo disai so tera roop, gun nidhan Govind anoop. Kyunki jo kuch vi dis reha tera hi roop nazar aa reha. Jivein aapan bhai Kanhaiya ji di saakhi padhde haan, जंग दे मैदान दे विच उदों फर्ज सी जदों जो दुश्मन हमला कर रहा सी कि उदों अपनी रक्षा करना भी गुरु दा हुक्म आ, पर हुण ओह थ्रैट खत्म हो चुकी है, हुण ओह मदद मंग रहा है।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह के मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर की जानकारी लई पिछले 33 सालों तो कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777

एडवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स सोफे लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: रोग गया

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

एक डर दुनिया दा दूजी तांग सजना दी तीजी उम्र बीत दी जावे पज पापा रोवा तेन तरस रता ना आवे दे दे मौत भी छोड़े नालो मेरी मुश्किल हल हो जावे ओ यार फरी तो पैर मैं चुम्मा

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: मैं जनाब मौला अली सरकार दा एक वाक्या पेश कर दिया। एक सवाली ने आके सवाल कीता हजरत मौला अली सरकार ने कि सरकार मैनू रोटी दे, मैं बहुत दिनों तो भुखा हूँ। जनाब मौला अली सरकार दे एक गुलाम सन जिन्हां दा नाम कंबर सी। मौला अली सरकार ने कंबर नू फरमाया कि सवाली नू रोटी दियो। कंबर कहिंदा कि सरकार रोटी संदूक है जी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North East Calgary।
2: ਅੱਜ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਏ ਹਰ ਜੇ

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

02-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6 स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी आज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-581-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 to 8 तक ते शाम 5 to 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www.punjabi

नाम जिसे कह उजली तिस दासी कनिया, जा प्रभ की हो चेहरी, जा प्रभ की हो चेहरी, सो सब तेरी।

सदा सुख जाका तुम मीरा जा प्रभु की हम चेर दे जा प्रभु की हम चेर दे सो

जा प्रभु की हाँ चेल रे, जा प्रभु की हाँ चेल रे, सो जा प्रभु की हाँ चेल रे, जा प्रभु की हाँ चेल रे, जा प्रभु की हाँ चेल रे, जा प्रभु की हाँ चेल रे।

भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनो तू रंग तरता खान सुहा सदा भग तेरा रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा।

रंग तेरा रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा रंग तेरे

रख ले वो मुगदिया जा खान सुहावा सदा रख तेरा रंग तेरी अपारा रंग तेरी अपारा रंग तेरी अपारा रंग तेरी

मीठे हर गुण गाओ जिनको तुम, मीठे हर गुण गाओ, मीठे हर गुण गाओ जिनको तुम, मीठे हर गुण गाओ।

पेट सो जीवन सो मीठे हर गुण गाओ तुम मीठे हर गुण गाओ मीठे हर गुण गाओ।

नाद पुरंग कह बेदया सनमुख उठतावे पवर धोबी कुसंबास का मिल आप बंधावे क्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अघा

की कमियां जा प्रीत गोविंद सुहाना की जाती गोविंद सुहाना की दुख दर्द प्रमता पाती दुख दर्द प्रमता का पाती जाती प्रीत

संत जना मिल हर जस गाए, कोट जन्म के दुख गवाए, जो चाहत सोई मन पाए, कर कृपा हर नाम दुआए, सर्व सुख

0: मानस पे देव देखिए कतला लागी वार मना दिया जी सोच दाव करे सोच जड़े अजाव इतने
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े पी तन बेच सोआ पौड़िया पीने आप सजो आप पीने रचो ना दुई गुदर सजिए कर आसन देखो चाओ दाता करता आपको कर पसाओ तू जनोई सबसे दे लैसे

सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत विसारया मन आसा चिंत विसारया विसारया मेरे हृदय सुध बुध विसर गई मेरे हृदय सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत विसारया मन आसा चिंत

हर प्रेम बणी मन मारिया मारिया मेरे हृदय सुध बुध विसर गई मेरे हृदय सुध बुध विसर गई मन आशा चिंत विसारिया मन आशा चिंत विसारिया विसारिया मेरे हृदय सुध बुध

गुर देखत मन सधारिया मेरा हृदय सुधबुद विसर गई, मेरा हृदय सुधबुद विसर गई। मन आशा चिंत विसारिया, मन आशा चिंत विसारिया मेरा हृदय सुधबुद विसर।

आए मिल वड़ पागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारे आए गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ने अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुवाकिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया बड़ पागी

हर प्रेम बाणी मन मारिया मेरा हृदय सुध बुध विसर गई, मेरा हृदय सुध बुध विसर गई, मन आशा चिंत विसारिया, मन आशा चिंत विसारिया मेरा हृदय सुध बुध विसर गई, मेरा हृदय सुध बुध विसर गई, मेरा हृदय सुध बुध विसर गई।

0: तुर पाग वडे हर पाया, नानक रसगुदा।
1: श्लोक महला पहला, कड़िया सब गोपियां पहलकन गोपाल, गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन वतन सब जंगा, नानक मसह ज्ञान बेहोनी खाए गया।
0: वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड उड रावा झाटे पाए वेखे लोक हसै कर जा। रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम। निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिनी रेंज ना मन चाओ। सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत। लाटू माधानिया अन गाह पंखी पौंदियां लैण ना साह, सूए चढ़ पवाइए जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत। बंधन बंद पवाए सोए पै किरत नचै सब कोए, नच नच हस है चल है से रोए, उड़ न जाहि सिद्ध न होए। नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तेना मन पाओ। पौड़ी ना उतर निरंकार है ना ले नरक न जाइए, जीव पिंड सब के सदा देखा जाए। आख गवाइए जिन उड़ चंगा अपना, कर पन्हो नीच सदाइए जे दरवाना।

0: मिल हर मन मने हौ मूर्ख कर लाइया, नानक हर कमे हर कमे।
1: श्लोक महला पहला, हौ विचाया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मोया, हौ विच दत्या हौ विच लया हौ विच कटिया हौ विच रहा, हौ विच सचियार पुड़िया हौ विच पाप पुन विचार, हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे, हौ विच भरिए हौ विच तोवे, हौ विच जाति जिन सिखवे, हौ विच मूर्खों विच सियाणा मोख मुगत की सार न जाना, हौ विच माया हौ छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया, हौ मैं बुझे तां दर सुझे ज्ञान च होना लखत मुझे, नानक नामी लिखिए ले
0: दीर्घ रोग है दारू पी इसमा है, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे, नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाए, पौड़ी से किति संतो कही जिनी सचो सच ते आयो निमंद कर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमायो नि दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया तुम खिशी अगला, नित देवे चढ़े सवाया बड़े आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया। गुर अमृत पिन्नी देहुरी अमृत बके राम राजे, जिना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके, गुर तुठे हर पाया चूके तक तके, हर जन हर हर होया नानक हर इक हर इक हर इक।

सिर तरी उतारे एक पोरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिल पीना तेरी जय।

0: यार वे हिक डू हिक चाड़े हो किस चिते यार हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हाँ कद पाई गुणता सा
1: जिन्हें मैं

0: हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुरु पसे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा शाह है, सिख दे हर रासे। तन तन बन जा रावण ज है, गुर शाह सबासे। जन नानक गुर तिनी पाया, जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे।
1: श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ के डील दिए, पढ़ पढ़ पर ये साथ, पढ़ पढ़ बीड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़िए जेते बस बस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते यार सा, पढ़िए जेते सास। नानक लिख है एक गल, और हमें चखना चाक मला पहला।
0: लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या। बहु पेख किया देही दुख दिया, सहो वेजिया अपना किया। अन न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया। बस्तर न पहरे एनिस कहरे, मोन बिगुता क्यों जागे गुरबिन सुता। पागो पे तरना अपना किया, कमाना अल मल खाई सिर छाई पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई, विण नावे किछ थाए न पाई। रह बेवाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी। सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेशे तेने केवल। हमें शब्द जलाए पौड़ी पग तेरे मन पाव दे। दर सोहन कीर्त नाम दे, नानक मां बाहरे। दर टो ना लहनी ताम दे, कंबूला बुझने अपना। अन होंदा आप बनाए दे, होटा डीका नीच जात। होर उत्तम जात सदाए दे, तेन मंगा जे तुझे ते आए दे। तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे।
2: ਕਿਰਪਾ ਬਾਰੇ ਦਾ ਢੋਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ

0: करजा पूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बेसनहा कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहा कूड़ खाया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा कूड़ मिया कूड़ दीपी कप होए का कूड़ कूड़े ने हो नका विसरया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हा कूड़ मिठा कूड़ माक्यो कूड़ डबे पूर नानक बखाने बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच था पर जानिए जा हृदय सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तर करे हच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मनर हसी है ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बह रह करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड़े तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मेंढा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाज छड़िए होए एक मन अलख ते आइए फल ते वे उपाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पुरब लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए हम क्या गुण तेरे विथरा स्वामी तू अपर अपर राम राजे हर नाम सला है दिन रात एह आस धरो हम मूर्ख किछु न जानहा किव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
0: श्लोक महला पहला सच का कूड़ वर्त्या कल का लपेता बियो बीज पतले गए अब क्यों गवे द्वार जीक होए गवे रुते हो तो नानक बाहे बहरा तुरे रंग न सोए पै विच कुंभ चढ़ाई है शर्म पाओ तल होए नानक भगती दे रपे
1: लब पाप दोए राजा मैं ता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सद पूछी है बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान भी होनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे श्रृंगार उचे कुके वादा गावे जुदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार तरमी तरम करेगा वावे मंगे मोख द्वार जति सदा वै जुगत ना जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तो ले जापे महला पहला।

0: करे सो होए अगे जात ना जोड़ है अगे दियो नवे
1: चंगे से के पड़ कर्म जना को तुद पाया था तिनी कसम ते आया इन जनता कह बस किछ नाही देखी जग तुद पाया इतना लुत मेल लै एक आप हो तुद खवाया गुरु कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया।

0: दास्तान ना होई तू करता करना मैं ना ही चाहो करी ना होई बलिहारी भगत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता अगला पर गया तू सच्चा साहिब सिर्फ सवालियों जिनकी दी सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जोगिश करना सो कर रहा महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
0: एक कृष्णम सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा वास देव से जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
1: कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बधा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़े होवे गुगार ता ओमी साधना मारिए जेह कल कलना तेवे हो ना उपचारिए ऐसी कल न खिलिए जित दर गए हारिए पड़े ते ओमिया विचार अगे विचारिए मुँह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
0: ऐसी कला ना करिए कि दरिया गया हारिए पड़े अपने उमिया विचार विचारिए

नानक दर्श निहाल, नानक दर्श निहाल, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्श निहाल, नानक दर्श निहाल, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे।

दीनानाथ दया हाँ बार बार जाओ गुरु गोपाल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल गुरु जी के दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभु मेरा एहे बिनंती सुन प्रभु मेरे सुन प्रभु मेरे सुन प्रभु मेरे दे नाम कर अपने चेरे मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हाँ खोली जियो खोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो गुर जी

0: गुर अमरदास दिठे मिले सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रयो ताते अंगद लहना प्रगट दास चरण लिव रहयो तेत कोल गुर अमरदास आसा निवास दास गुण कवन मखानो जो गुण अलख अगम तने गुण अंत न जानो बोल तो विदाते निर्मयो सब संगत कोल उधरण गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पाशरण
1: आप नारायण कलातार जग मह परवरयो निरंकार यकार ज्योत जग मंडल करयो जह तह तह परपूर शब्द दीपक दीपायो जेह सिखा संग रहयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो

जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा अगम अलह कारण पर जो फरमावे सो कहूं गुरे अमरदास कारण करना।

0: जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम जड़ायो नवनिध नाम निधान रित सद ताकी दासी सहज सरोवर मिलो पुरख भेटियो अपनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दड़ायो गुर रामदास गल उचर तै हर प्रेम पदारथ पायो
1: तित नाम राग तेतीस ते आवे जती तपीसर मन वसया सोई नाम सिमर गंगे पिता मैं चरण चित अमृत रसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत।

फूले सुत दारा से प्रीतल एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते है मिलंत जम त्र

0: पाठ कीरत की गुरे राम दास राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुरु सेविया अहन सुसहज दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख हुआ सेहत खसामंदी नूर अरसह कुरसह।

गोर देखलाई मोरी जेत मेरा गा पाड़त है चोरी मुंडलिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मिटिया उबा करिया कहो कबीर जान जानिया जाओ जानिया तो मान मानिया कुंभ कमल जल भरिया जल मिटिया उबा करिया कहो कबीरा जान जानिया।

जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया।

गुर की आज्ञा पानी। कहो नानक जिन जमते काडे तिस गुर के कुर्बानी। जब ते दर्शन पेटे साधु

जब ते दर्शन पेटे साधु अले दिन सोए आए। जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिन सोए आए। जब ते दर्शन पेटे

0: क्यों मनो विसारे। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब किश है। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। सदा कुर्बान किया गुर विटो जिस दिया वडिआइया। सचा नाम मेरा आधार। वजे पंच शब्द कार सपागे, कार सपागे शब्द वजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर कह लागे। आनंद सुनो वट पागी हो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची बाणी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे।
1: बोलो दीवाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर काए गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नाम सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जा।

आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रखे आरे आए ता देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले

0: मिले जो हर मन पाए, जन नानक सतगुर पेटे आ, हर नाम तराए तराए।
1: श्लोक महला पहला, दया कृपा संतोख सुख जत कंडी सतगुरु, इहो जिहो जी का है ता पांडे काट, ना इहो टुटे ना मन लगे, ना इहो चले ना जाए, तन सो मन सुना जो कल चले पाया,
2: चौकड़ मन
1: आया मैं चौके पाया, सिखा तन चढ़ाई गुर ब्राह्मण थिया, ओ मुआ ओ चढ़ पया
0: गया। लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख गियां पैना मियां रात दिन सजी नाल तग पाहो कती है बमन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटी है पी फिर पाई है होर नानक तग न टुटे जे तक होवे जोर महला पहला
1: नाए मने पत उपजे साला ही सब सूत दरगे अंदर पाई है तग न कुछ सूत महला पहला
0: तग न इंद्री तग न नारी पल के थुक पवे नित दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी वट तागे अवरां कते लै पाड़ करे वी आहो कड़का दल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा नाओ सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार करे सी सो सिव सेवा करे जिसनो हुक्म मनाई सी हुक्म मन्या होवे प्रवान ता खसमे का मेल पाई सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाई सी ता दर गए पैदा जैसी पैदा जैसी कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे।
1: श्लोक महला पहला, गौ ब्राह्मण को प्रलाव गोवर्धन न जाय तो टिटका दे जप वाली तान मलेशन पाय अंतर पूजा पड़े कते पाय संजा तुरका पाई छोटी ले पखंडा नाम ने
0: मानस खाने करे निवाज छुरी बगायन तिन गल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद

जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सयाने राम राजे। जे बाहरों पुल चुक बोल दे पीखरे हर पाने, हर संतानो होर थाओ नाही हर मान निमाने। जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने, तान सताने।

0: सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा वाहिगुरु।
1: श्लोक महला पहला जेकर सुख

0: सो लग गए गुरसिखा मन मिठा, हर दरगह गुरसिख पहनाइए, जिना मेरा सतगुर तुटा। जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा।
1: श्लोक महला पहला, नानक फिके बोले तन मन फिका हो, फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए, फिका दरगे सतिए मोट का फिके पाए, फिका मूर्खा की है सजाए।
0: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैं, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार, तिनने हो लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी बाज सचे ना। दरवाट ऊपर खर्च मंग

0: जन नानक कहो हर कृपा कर, नित जप हर नाम करावे।
1: श्लोक महला दूजा, एक नी आस की दूजे लगे जाए, नानक आसक काटिए सधी रह समाए। चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आशके ना आखिए दिल के पतन से वाला दूजा।
0: सलाम जवाब दोवें करे मुंडों कुथा जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए नकाई, पाए पौड़ी जित से वैस पाई है। सो साहेब सदा समाली जित की तपाई अपना, साकाल बुरी क्यों काली है मंदा मोला की चाई। दे लम्मी नदर निहाली है जो साहेब ना लहारी है, ते वेहा पासा टाली है किचला है, ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है। जिन गुरमुख नाम आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे, जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिनी सतगुर प्यारा से तिना सुख सद होई, जिना नानक सतगुर पेटिया तिना मिलया हर सोई हर सोई।
1: श्लोक महला दूजा, चक्र

0: आपे पूर्ण दे, इतनी दूध समाई है, चले रहन चढ़े, एक ने हाली पैसा, एक ऊपर रहन खड़े, ना सारे
1: आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जंतु पाए कै दिखे थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब किच आपे आप पौड़ी वड़ी क्या वड़ाइया किच कहना कहन न जाए सुकरता कदर करी दे जिया रिजक संभाए साईकार कमावणी तुर छोड़ी तेरने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जिसर जाए सुंदर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गेम शतकाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गेम शकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: बोल जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर काय गुरु नानक लेंते आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होय सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराव श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे

दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी वाहे।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद चक्र चिहन अर वरण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण सह सहान गुण जाय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कह सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अब रख उदास भाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की और नाख सफारे करे आज फोन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत वस्त्र दीन बहुसाज सुदामा अपदा ते राखिया गण का पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सुप्रसन्न कल युग होए रख हो दास पाठ की लाज हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या की जाय बचनी तोर मोर मन मान जन का पूर्ण दीजाय हों बल बल जाओ रमैया कारण कारण कवन अबोला बहुत जन्म बिछड़े थे माधो इहो जन्म तुम्हारे लेखे कर अवदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे मैं नाही कश हों नहीं किस आहे न मोरा अवसर लज्जा राख लेहो सदना ज्ञान तोरा तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सहेले राख हो राखण हार दयाला नानक करके गोले सुखो टल गुर सेविया अहिंस सहज दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख हो आए सिफत खसाम दी नूर अरसां कुरसां तद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास

संता मन पावन सुख बनया किस जोग प्राप्त गनया संता मन पावन सुख बनया किस जोग प्राप्त गनया रहा गौर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजी अले आन हद बाजे कुंभ कमल जाल भरिया जल मेटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया जाओ जाने।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 Avenue North East कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue North East कैलगरी।

धन गुरु रामदास पातशाह। सतगुरां दे बेले अमृतसर दे विच एक बड़ा ही गरीब परिवार, अत दी गरीबी है। आ एक बुढ़ी मां अपने छोटे जे बच्चे नूं, जिस दा नाम इतिहास विच सोमा, 13 साल की उम्र है। बुढ़ी मां की आख रही है, सोमिया तेरे सिर ते बाप दा छाया नहीं है, हुण मेरे कोलों होर मेहनत मजदूरी नहीं होती, मेरा बुढ़ा शरीर हो गया, मेरे कोलों हुण भार नहीं चुकिया हुंदा, हुण मेरे कोलों चाकरी होर नहीं हुंदी, पुत्र हुण तू कोई कर्म करिया कर। मां मैं केड़ा कम करांगा, तेनू पता है मैं ते कदी कोई कम नहीं कीता। मां ने आखिया, पुत्र मैं तेनू कुंगणियां बना के दिया करांगी, ते तू शाबे विच पा के बेच के आया कर, भाव छोले अवाल के दिया करांगी, ते टोकरी विच पा के बेच के आया कर। आपां तकिया है ना, रेहड़ी वाले छाबी वाले किथे खलोंदे ने, जिथे ज्यादी भीड़ हो गई। मां मैं किथे खलोवांगा, मां आखन लगी, पुत्र तू श्री दरबार साहब दे सामने जाके खलोया कर। तन गुरु रामदास पातशाह सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते बहुत संगत आउंदी है, उथे तेरियां कुंगणियां बहुत बिकया करनगियां, नाले घर दा गुजारा चलेगा, ते नाले ऐ पुत्र सुबह शाम सतगुरां दी बाणी भी सुन लिया तू करेगा। अत दी गरीबी है, सवेरे खा लेंदे ने ते शाम दा फिक्र लगा रहिंदा है। आ सतसंगीओ, सोमा हर रोज ही शाबी दे विच कुंगणियां पांदा, ते श्री दरबार साहब दे सामने जा के उंजे बोरी बछा लेंदा, ते अगे टोकरी रख के आवाजा मारदा है, कोई कुंगणियां लै लो, ते स्वाद इन्ना चंगा है, जे देखिया ना भी मेरी शाबी वाल कोई गरीब तकदा है, ते बुक भर के उनू भी दे देंदा, भी तू भी खा लै, किते मन दी रीह दी ना रह जावे, भी पैसे नहीं ते मैं खा नहीं सकदा, इन्ना स्वाद आ चंगा है। हर रोज श्री दरबार साहब दे सामने छाबी लांदा है। ते सतसंगियो, एक दिन दी गल है, सोमा नित कर्म अनुसार श्री दरबार साहब दे सामने कुंगणियां वेच रहा है। इन्हे नू धन गुरु रामदास पातशाह अंदरों आए, आ जदों ड्योड़ी दे बाहर आए ना, ते सतगुरां ने की तकिया, ओ सामने पुंजे बोरी बछाई हुई है, अगे टोकरी रखी हुई है, ते एक गरीब बच्चा गल दे विच फटे हुए कपड़े आवाजा मार रहा है, कोई कुंगणियां लै लो। जदों सतगुरां ने इस गरीब वल तकिया, ते एक सार टिक टिकी ला के सतगुरु इहदे वल देखी जांदे, सतगुरु हुण इस दे वल गए, जाके पुछ कीती, क्यों वे तेरा की नाम है, उठ के खलो गया, हाथ जोड़े, सतगुरु मेरा नाम सोमा है, क्यों वे सोमिया तू किन्ने पैसे वटे ने, सतगुरु
मैं 40 पैसे वटे ने। आपां देखिया है गरीबां ने कोई गोलक नहीं लाई हुंदी, गला नहीं लाया हुंदा। जिस बोरी ते बैठना उसे बोरी दे पुंजे पैसे रखे जाने। सोमा चट नीमा होया ते बोरी दे थल्यों पैसे कढ लैने। भई किन्ने पैसे ने? सतगुरु 40 पैसे ने। भई इंज कर, तू 40 पैसे मैनू दे दे। अज सतगुरां ने 40 पैसे लै ले। चंगा वे सोमिया, असी चल दे। इधरों मां उड़ीक कर रही है, हुणे सोमा आएगा ते कुछ खाण वास्ते लियावांगे। घर दे विच महीने महीने दा राशन आ जाना। अज खादी है, कल दा कोई भी फिक्र नहीं। सतसंगियो, ये अमीरां दी गल है, जेड़ी गरीबां दी गल है। जेड़ा दिन भर विच कमाना है उही शाम नूं खाना है। आ जदों सोमा घर आया, मां ने पुछया, सोमिया किन्ने पैसे वटे? जल्दी दे, तेरे वास्ते कुछ खाण वास्ते लिया। मां, अज मेरी शाबी ते धन गुरु रामदास पातशाह आए सन, सारी वटक मैं सतगुरां नूं दे दित्ती है। मां ने बाहां विच लिया, आखिया, पुत्र तू बड़े भागां वाला है। ये सतजुगी मां है, इस मां ते गुरु दी कृपा है। कोई हुंदी कलजुगी मां ते मुंह ते चंडा ला दी, घर विच खाण नूं आटा नहीं, ते तू सारे पैसे गुरुद्वारे सुट आया। नहीं बई, इस मां ते गुरु दी कृपा है। पुत्र, तेरे चंगे भाग ने। अज घर दे विच जो भी रुखा मिसा है, खा के गुजारा कीता है, रज के भोजन नहीं छकिया। दूजे दिन सोमा टुरन लगा ते मां समझा रही है, पुत्र जे अज भी सतगुरु आण ते सारी बटक सतगुरां नूं दे देवी। आ दूजे दिन सोमा गया, सारा दिन कुंगणियां वेचियां, शाम पई ते सतगुरु फिर आ गए। क्यों बई, अज किन्ने पैसे वटे ने? सतगुरु, अज मैं 30 पैसे वटे ने, सतगुरां दे हाथ ते रखे। शाम पई सोमा घर आया, मां अज फिर सतगुरु आए सन, मैं सारी बटक सतगुरां नूं दे दित्ती है। ते सतसंगियो, सच जाणो, अज घर दे विच इन्ना भी आटा नहीं कि एक फुलका बन सके। मां समझा रही है, पुत्र जे ना प्रशादा खाण नूं होवे ते पानी रज के पी लईदा है। आ गरीबी दे विच कई बार इहो जे दिन भी आ जाते। अज मां ते पुत्र ने प्रशादा नहीं छकिया, पानी दे नाल पेट भर के सुते ने। बेशक पेट तो भुखे ने, पर अज जिनी खुशी कदे बिना गुरु दे प्यार विच भुखे ने। तीजे दिन सोमा घरों टुरिया ते मां ने समझाया, पुत्र गुरु पता नहीं केड़े गली खुश है, मन विच मैल ना लियाई। जे अज भी सतगुरु आण सारी बटक दे देवी, नहीं ते आप देण चला जाए। आ तीजा दिन होया, सोमा सारा दिन कुंगणियां वेचियां, शाम पई ते सतगुरु आए नहीं। मोढ़े ते रखी बोरी ते सोमा आप अंदर चला गया।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਫਟੇ ਹੋਏ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ?

सतगुरु अज मैं 15 पैसे वटे, जेब विचों कड़े पैसे सतगुरां दे चरणां विच रख दिंदे। सतगुरु आखन लगे सोमिया एक गल समझ आ, तैनू दिनों दिन घाटा क्यों पैंदा जांदा है। पहले दिन तेरे कोल आए तू 40 पैसे वटे सन, दूजे दिन 30 पैसे ते अज तू 15 पैसे वटे। तेरे काम दे विच क्यों नहीं बरकतां पैंदियां, ते ज्यों जे सतगुरु बोल रहे ने अखां विच हंझू भरे होए ने। सतगुरु मैं बड़ा ही गरीब हाँ, जिन्ने पैसे हुंदे ने तुहानू दे जांदा, पहले दिन दे 40 पैसे भी तुहानू दे दिते, ते अज आखरी 15 पैसे भी तुहानू दे जाने ने, ते सतगुरु मेरे कोल हुण पैसे मुक गए ने। हुण कल तो मैं शाबी लाण वास्ते नहीं आना, मैं बड़ा ही गरीब हाँ। सतगुरु रहमत दे घर विच आए, सोमिया क्यों झूठ बोलदा है, तू ते बड़ा ही अमीर है। नहीं सतगुरु मैं गरीब हाँ। नहीं बई तू अमीर है। जदों सतगुरां ने 2-3 वार आखिया, हंझू भर के आखण लगा सतगुरु 3 दिन हो गए ने, मैं ते मेरी मां ने प्रशादा भी नहीं छकिया। पौन वास्ते चंगा कपड़ा नहीं, जेब विच पैसे नहीं, 3 दिन तो मां भी भुखी बैठी है, केड़ी मेरी अमीरी है। सतगुरु तुसी मेरा गरीब दा हाल की जाना। जदों इन्नी गल आखी सतगुरु उठ के खलो गए, बाहां विच ले लिया सिर ते रखिया हाथ, सोमिया तेरी हालत मेरे तो ज्यादा कौन जान सकता है। अज तों बाद तेरी गरीबी कटी गई, की आखन लगे सोमा शाह, शाहां दा शाह बेपरवाह। आ कुछ ही महीने बीते ते की बख्शियां होईयां, अमृतसर दा सब तो अमीर बंदा सोमा, जिसनू हर कोई शाह जी करके बुलांदा। हर पासे सोमे शाह दियां गल्लां हुंदियां, बड़े धन वाला है, ते जिसदा नाम इतिहास विच वी शाह जी करके लिखिया जांदा, ते देखो गुरु दी किरपा, अज वी सोमे शाह दे परिवार दे मैंबर जिहड़े शहरां विच वसदे ने, ते लोकी उन्हां नूं अज वी शाह जी करके बुलांदे ने। ऐ सतगुरु जिन्हां दा कोई नहीं उन्हां दा तू हो जांदा है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप,

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, साउथ ईस्ट कैलगरी, नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8807

और जानकारी ले 587-917-0807 कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेन ले कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी ले साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street North East कैलगरी।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा आपना, आपे ही कीता पावना। हुकम किए मन पावंदे, राह पीड़ै अगै जावना। नंगा दोजक चालिया, ता दिसै खरा डरावना। कर

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी ले साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

नानक बुझण पूरे भागे। विस्माद एक ओ अवस्था जिथे मनुख दी सोच शक्ति शिथिल हो जाए, अगों सोच ना सके, ऐसी हालत विच जो अवस्था बन दी है उनू आश्चर्यता, विस्माद, रहस्यमय, विस्मय करके कहंदे ने। आसा दीवार दी जो ये तीसरी पौड़ी है, इस दे नाल जो पहले पातशाह जी दे ये दो सलोक ने, इहदे च कादर दी तरफों वरती है जिहड़ी कुदरत ते कुदरत दे जो विस्मादता है, उसका साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिक्र करते हैं। अजोके समय च विस्माद मनुख की जिंदगी च खत्म होता जा रहा है, क्योंकि मनुख जब हंकारी हो जाए तो वह कह देता है मैं सब कुछ जानदा। जैसे ये दावा होवे कि मैं सब कुछ जानदा, उत्थे विस्माद का जन्म नहीं आता, उत्थे रहस्य का जन्म नहीं आता, उत्थे आश्चर्यता पैदा नहीं आती। हैरान कुन अवस्था उत्थे बनती है जब ऐसा मनुख सोचे तो उसके कोल बारीक बुद्ध होवे कि मैं जो कुछ वेख्या है पूरा नहीं वेख्या, मैं जो कुछ सुने है पूरा नहीं सुनिया, मैं जो कुछ सोचे है पूरा नहीं सोचे, मैं जितना गवन कीता है फिर भी मैं पूरा गवन नहीं कीता, मैनू जो कुछ दिखाई दे रहा है ये इतना ही नहीं, ये होर भी है, ये होर भी है। ऐसी बुद्धि लई विनम्रता चाहिए है, निर्माणता चाहिए। कहिंदे ने एक बच्चा रहस्य देश जीवंदा है, एक कवि रहस्य देश जीवंदा है, एक संत रहस्य देश जीवंदा है। इन्हां तिन्हां तो इलावा मनुख की जिंदगी देश आश्चर्यता, विस्माद, हैरानकुन अवस्था देखनी बहुत औखी है, क्यों कि इन्हां तो बिना जो जीवन है वह अहंकारी है, ते अहंकारी की जिंदगी विस्माद नहीं आता। बच्चा विनिम्र है, जो कुछ नहीं जानता उसके बारे उसका जानकारी का दावा नहीं है, उसके बारे उसका प्रगटावा नहीं कि मैं जानता। इस वास्ते बच्चा उड़दियां हुई तितलियां नू वेख के भी विस्माद विच लीन हो जाता है, बच्चा खिड़े हुए फुलां नू वेख के भी सोचण ते मजबूर हो जाता है कि धरती दे चों ये कैसा सुअपन, धरती दे चों ये कैसा नूर। एक बच्चा ते सूरज नू वेख के भी हैरान हो जाता है, और इस तरह की थोड़ी जिहा भी बुद्ध रखण वाला मासूम बच्चा जद रात नू चंद्रमा नू वेखदा है चमक दे नू, रहस्य नाल भर जाता है, विस्माद नाल भर जाता है। लेकिन ये विस्माद बच्चे दी अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। एक होर विस्माद है जो कवि कोल है, शायर कोल है, और जिथे विस्माद नहीं शायरी का जन्म भी नहीं आता। आम मनोविज्ञानी का कहना है कि रहस्यमयी अवस्था तो ही कविता का जन्म है, शायरी का जन्म है, कि जिस शायरी का जिस कविता दो रहस्यमयी विस्मादमयी अवस्था तो उत्पत्ति नहीं हुई, जन्म नहीं होया, दरअसल कविता कविता ही नहीं, वो शायरी शायरी ही नहीं। विस्माद जिथे मनुख हैरान हो जाए, विस्म हो जाए, रहस्य की दुनिया विच खो जाए, इसलिए तीक्षण बुद्ध चाहिए। तो कवि का विस्माद अबोध अवस्था ते नहीं खड़ा, सुबोध अवस्था ते खड़ा है, लेकिन खड़ा है हिरदे दे तल ते। इस वास्ते कवि कोल रहस्यता थोड़ा जिहा रस भी है, कवि कोल विस्माद दा थोड़ा जिहा रहस्य भी रस भी है, जदके ए रस बच्चे कोल नहीं है। हैरानकुन अवस्था जरूर है लेकिन ए रस नहीं है। विस्माद दे च फिर जीवंदे ने संत, ये तीसरी कोटि च आ जांदे ने, और ये तीसरी कोटि शिखर है, सिरमौर है, उच्चता है। ये अपनी आत्मा दे तल ते जीवंदे ने, ते आत्मा दे चों जो कुछ भी चारों पासे अंकुरित होया है और होंदा रहिंदा है, इनू वेख वेख के वो विस्माद होंदे ने, इसनू वेख वेख के वो रस लेंदे ने। ऐसा जगत दे च जो कुछ अंकुरित होंदा है उस परम आत्मा तो, उनू वेख वेख के
गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने मैं विस्माद दे चला गया, वेख विडान रिहा विस्माद, नानक बुझन पूरे भाग। साहिब कहिंदे ने मैं यह विडान यह कौतक वेख के विस्माद हो गया। पर यह विस्मादमई अवस्था भी साहिब कहिंदे ने नानक बुझन पूरे भाग, कोई बुझदा है कोई जानदा है पूरे भागा नाल, भाव उसकी प्रालब्ध उच्ची होवे, उसके पुरबले संस्कार महान होवन, उहदे ते प्रभु की दया बहुत वड्डे पद्धर ते होवे, तां किते ओह विस्मादमई जीवन जीवंदा है, रहस विच जीवंदा है। अजोकी सदी ये जो 20वीं सदी है ये रस विहीन हो गई है, क्योंकि रहस विहीन हो गई है, स्वाद विहीन हो गई है, क्योंकि विस्माद विहीन हो गई है। स्वाद ते उत्थे है जिथे विस्माद है, रस ते उत्थे है जिथे रहस है, रहस खो गया रस खो गया, विस्माद खो गया स्वाद खो गया। विस्माद क्यों खोया, रहस क्यों खोया, अहंकार वध्या। ते अहंकारी कहिंदा है मैं बदलां नूं जो वेख्या है मैं वेख लिया पूरा और मैं जान भी लिया है, मैं सूरज नूं जो वेख्या है मैं वेख लिया पूरा और मैं जान भी लिया है, ये धरती ये मैं वेख लई है और मैं इहनूं जान भी लिया है। ये किसे वक्त धरती दा सूरज दा एक हिस्सा सी, ये धरती टुट के ये थल्ले आई, एक पासे होई, सदियां तक गर्म रही, फिर ठंडी होई, फिर इस देश बनस्पति पैदा होई, फिर सहजे सहजे ये जीवन चलिया जो अज विचर रहा है। इस तरीके नाल एक जानकार बंदा कह देंदा मैं ते सब कुछ जानदा, इस वास्ते विज्ञानक दे कोल रहस्य नहीं होंदा, विस्माद नहीं होंदा, स्वाद नहीं होंदा। विज्ञानक कोल कवि वाला हिरदा नहीं, विज्ञानक कोल शायर वाला हिरदा नहीं। उसकी पदार्थ दे नाल नेड़ता होंदी होई भी पदार्थ तो दूरी है, क्योंकि उसने पदार्थ दे वजूद नूं वेख्या, पदार्थ दी रूह नूं नहीं वेख्या, संसार दे आकार नूं वेख्या, उन्हें इस दी बुनियाद नूं नहीं वेख्या, उसने इस दे नूर नूं नहीं वेख्या। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान मैं वेखदा और वेख वेख के विस्माद हो रहे हैं, रहस विच खो गए हैं कि कुछ वेख रहे हैं और किन्ना पसारा है। इस श्लोक विच गिणती दे मुताबक गुरु नानक देव जी महाराज दसदे जा रहे ने, विस्माद नाद विस्माद वेद प्रथम ते मेरे लिए जो आवाज है जो मेरे कन सुन देने, इन सुन सुन के मैं विस्माद दे चला जाना। असी भी सुनते हैं बदलों की गर्जन सुनते हैं, कोयलों की कूकू सुनते हैं, मनुखा दे बोल सुनते हैं, सागर का गर्जन सुनते हैं, पवन की शाशा सुनते हैं, चिड़िया का चहचहाना सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, गीत सुनते हैं, पर विस्माद नहीं, रहस्य नहीं। कारण असी नाद की खलड़ी वेखते हैं, रूह नहीं वेखते, उपरों ही सुनते हैं। ये जितनिया आवाजा ने जो शब्द जो आवाज जो स्वर जो ध्वनि साढ़े कन विच पै रही है, गुरु नानक देव जी महाराज ते इंज कहिंदे ने, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर। मेरे लिए ते हे परमात्मा तू ही बोल रहे हैं, किधरे सागर दे गर्जन विच, किधरे पवन दी शांशां विच, किधरे मनुखा दी भाषा विच, किधरे बंदियां दी बोली विच, किधरे पंछियां दे चहचहाण विच, ये आवाज सब तेरी है, ये धुन सब तेरी है। जे तारूप काया तेरी, ये जितना आकार मैनू दिखाई दे रहा है ये ते तेरी काया है, ये ते तेरा वजूद है, और इस वजूद दे चों जो कुछ भी प्रगट हो रहा है ये तू ही है। तो साहिब कहने

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

9400 403 7193400 और जानकारी ले साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue, Northeast Calgary।

0: हे सच्चे पातशाह सारे तेरे पासों ही दाता मंगते ने, कोई दुध मंगता है, कोई पुत्र मंगता है, कोई माया मंगता है, कई वो बिरले ने जेड़े तेरा मिलाप मंगते ने। महाराज जी तुहाडे दर्शन हो जाण वो बिरले ने, पर मंगते सारे तेथों ही ने। तू सच्चा पातशाह है। संसार दे राजे जिन्हां नूं आपां कह दिंदे आ जी ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेजीडेंट है, राष्ट्रपति है, पर वह भी भाई सारे गुरु दे दर दे मंगते ने। आपां सारे सच्चे पातशाह ते मंगदे हां, तू सावना करे कदात, ते तुसी ही सच्चे पातशाह इक दात दित्ती है सानू मनुखां नूं, विशेष दात। यह मनुखी जामे च प्राप्त हुंदी है, तेज दिमाग, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, निर्णय शक्ति, प्रोफाउंड इंटैलीजेंसी, तेज दिमाग, डिवेलप्ड ईगो, विकसित होमे, स्वैमान कहिंदे आ जिहनूं, तेथों ही मंगते हैं। तो तू ही यह दाता दना है सारिया, कई बहुता प्रसन्न हो दाना, ब्रह्म ग्यानी ब्रह्म ज्ञान रूप भी दात बख्श दना, जिन्हों ते बहुता प्रसन्न हो जाए।
1: सब को तुझ ही विच है मेरे शाह, तुझ ते बाहर कोई ना है।
0: सारे तेरे विच ही ने, तू सारिया दे विच समाया होया है, तेरे तो बाहर कोई नहीं, तेरे हुक्म तो बिना वाहिगुरु जी पत्ता नहीं हिल सकता। जो हुंदा तेरे हुक्म दे विच ही हुंदा है। गुरु के प्यारे तेरे हुक्म नूं सत सत करके मनदे हन, तेरे भाणे नूं, भावें उहनां ते दुखां दा समां आवे चाहे सुखां दा समां। दुख वेले अरदास करदे हन, सुख वेले सिमरन करदे हन। ऐसी अवस्था गुरमुखां दी हुंदी है, सारे तेरे विच ही ने, तू सारिआं च ही है समाया होया, तेरी चेतन शक्ति सारिआं च कम कर रही है। तुझ ते बाहर कोई ना है, तेरे तो बिना कोई नहीं।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैल

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144-3660 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालेयां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: 7188 1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63rd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700-403-439-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल से खोजी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया जे

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लों होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लों होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू काट काट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन

अंता। तेरे भगत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बिनती चौपाई। हमारी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोहे बचावह। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चौन चौन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख ली हो मोहे राखन हारी, साहेब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का की आत्मासा। जमन काल जोगी सेव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेता, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश पेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बेद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पुपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव।
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है, रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहारे हो, ताकि ताप तनक मह हारे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहि उबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दार

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शबद गावण आइया शबद ता गावह हरी केरा मन जिनी वसाया कहै नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर

वारणा सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साची साहेबा क्या नाही कर तेरै करता तेरै सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहौ जिस दिया एह वडिआईआ कह नानक सुनहो संतहो शबद धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित कर सभागै कर सभागै शबद वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर आन।

रवेण पुंचन्ते महीपते दानं परापूरवेण पुंचन्ते महीपते विपरीत बुद्ध्यं मारत लोकः नानक चिरं काल दुख भोगते पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन मदानिया त्यो मथै त्रमराय नाम त्याइन साजना जनम पदारथ जीत नानक धर्म ऐसे चवह कीतो पवन पुनीत तन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जोद बिचार देह अनित ननित रह जस नाव चढ़ै भव सागर तारै धीरज धाम बनाय इह तन बुद्ध सो दीपक ज्यो उजियारै ज्ञान है कि बढ़नी मन हाथ लै

है मरौ तहार कै द्वार, मत हर पूछै कौन है पर हमारे बार। गगन दमामा बाजियो परि

0: ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी